0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इश्क के रंग में रंग जाओ, मेरे जाओ, इश्क के रंग में रंग

मुकरे जनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे जीपी जे पीएमसी फैकल्टी में खदशा साम्हूं अची विया। फैसले ते नज़रसानी करण सीनियरिटी मेरिट ऐं अहलियत जो मयार बरकरार रखण जो मुतालबो। वज़ीर आला हाउस जे तर्जुमान जो चवणु आहे त निगत शाह जे 3 सालनि लाइ मुकररी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐं PDMDC तरफ़ां जारी थियल गाइडलाइन तहत निज कॉन्ट्रेक्ट बुनियाद ते कई वई आहे। घड़ी यासीन मेण जे अतल चार बंद सख़्त सिक्योरिटी बावजूद शरद कोर्ट जे अॻूणे चीफ जस्टिस आगा रफीक दुरानी जे बंगले ते पेट्रोल बम उछलाए विया। KTN न्यूज़ वाक़े जा CCTV फुटेज हथ करे वरिता। बुट बदल जवाबदार भित तां बंगले अंदर पेट्रोल बम फिटो करे फरार थी विया। CCTV फुटेज में जवाबदार खे पेट्रोल बम उछलाईंदे ॾिसी सघिजे थो। वाक़े बाद पुलिस जा अटाला पुछी विया, सिक्योरिटी इंतज़ाम सख़्त कया विया। पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मोर के नायब सदर आलमगीर समेत 3 ॼणनि जो लाश कतुल केस दाखिल। आलमगीर खान फौज समेत 3 ॼणनि जे कतुल जो केस अहमदपुर दीनू शाह थाणे ते दाखिल कयो वियो। आलमगीर खान कोच ऐं मशहूर कोच जे ॻोठ मीर साहिब कोच में जनाज़ नमाज़ अदा कई वई। DPO रहीम यार खान, इरफान समो सिविल सोसाइटी ऐं ॿियनि जी शिरकत। DPO इरफान समो चयो त मुख्य जवाबदार कंबो शिमलो ऐं मशहूर कोच समेत ॿियनि खे मुंतक़िद इंजाम ताईं पहुचायो वेंदो।

0: बहजो शहर बहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं
2: GFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

केटीएन न्यूज के शहीद साफी जान मोहम्मद महाराज की अजटी वर्सी चक में शहीद जान मोहम्मद की मजार से माइटन कलमधन की हाजिरी टे साल गुजरण बावजूद कतल केस जा मुख जवाबदार कानून की पकड़ का आजा सिंध हुकूमत के वायदन बावजूद शहीद के खून से इंसाफ न थी सको छह जवाबदार बख्शल महर बाबर बशीर मुनवर महर रमजान शेख ए बया जमानत आजाद थे मुख जवाबदार जुम्मन महर गुलजार नसीर रोशन मोहसिन महर ए बया गिरफ्तारी न थे वारिस इंसाफ के ओसड़े में वेठन।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।
3: बहजो शहर बहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
4: GFM 90.8।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: ये जा रंग रौनकों ऐं ज़रखेज़ी असां जे हारिय साईं ताहिं आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
3: सुनिए

0: मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज, मुझे कहते हैं आज रुखसार सिंध की आवाज। जहाँ जहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल टिप टॉप सर कूल, एक साथ एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार, पूरी पूरी एक बजे तक
1: तैयार।
0: वो तमाम तो लोग जो कि इस वक्त में ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिसमें भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हाँ वो सेफ सेफ जर्नी, बट अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहते हैं जी गेट वेल सून, और वो लोग जो कि कुछ डिफरेंट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, कुछ अलग कर रहे हैं लाइफ में, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेस।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: GA FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: यार मछा क्या किथे वन्या घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी
4: जो भला साथ हुआ तो खे साफ साफ बुधा मसलो छाए
3: यार हिक मसलो हुजे तब बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगला है न भूख सही लगे थी अजे कुछ भी खावा थो तो हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पैर सुन थी वन था.
0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
5: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ. GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
6: It's time to commercial break.
7: जो अनप वधी का मान बधाएं लाए तमासा गर रहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कर आला बयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणू छटाई करने में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए.
8: अगर खूबसूरती खपे त आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा ए एवोकाडो अवां जी स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग ये शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक ए निखार जो बेहतरीन इंतखाब. आर्च ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
9: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: फ्रंट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: रुकिए अगर आपने अब तक BS में एडमिशन नहीं लिया तो ये पैगाम सिर्फ अकबिल के लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरों से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में BS कंप्यूटर साइंस BS इंग्लिश और BS पब्लिक हेल्थ के एडमिशन्स जारी हैं मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स स्मार्ट क्लासरूम्स लाइब्रेरी इंडोर गेमिंग कैफेट एरिया और बेहतरीन कैंपस फैसिलिटीज के साथ मयारी तालीम आपके अपने शहर में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एडमिशन फेवर पर 50% ऑफ और सेमेस्टर फेवर पर 10% का खास ऑफ भी दस्तयाब है अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं आज ही भिटाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए लिमिटेड सीट्स अप्लाई नाउ मजीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 03222841047
0: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
2: सिंध का शहर खास
0: मीरपुर खास
3: चाहो था तो अवा जो पैगाम बेन ताई पहुंचे 3720071
0: मीरपुर खास की आवाज

0: ओके, किसी को डेडिकेट करना है?
1: गाना
0: प्ले करने जा रहे हैं कॉलर का।

0: ओके जी, एक और कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो, फिर से कोई नहीं है, एक और कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ, खैरपुर से।
0: अब्दुल्ला खैरपुर से बात कर रहे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं
1: जी?
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं? हेलो
1: जी, पहली दफा काम कर रहे हैं।
0: प्रोग्राम सुनते हैं
1: जी?
0: कौन सा प्रोग्राम है?
1: जिंदगी गुलजार है।
0: और ये गाने सुनाएंगे
1: जी?
0: सुना दें?
1: हम नहीं सुनाएंगे, हमको सुनाओ।
0: चले मैं आपको सुनाती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। 03000134888, एक और कॉलर। हेलो,
2: अस्सलामुअलैकुम बाजी।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: मैं आप बनी दुर्ग बात कर रहा हूँ, जिसमें बात सिंध से।
0: क्या बात है, क्या हाल चाल है?
2: हाल चाल फिर आज थोड़ा सा दुर्ग याद करके आया हूँ, सुनाऊंगा।
0: गाना याद करके आए
2: जी?
0: सुना दे फिर।
2: सुना रहा हूँ, एक दुर्ग मेरी पहचान, एक दुर्ग मेरी पहचान, तेनु जिंद आखा ते जान, पहला रुका जितान।
0: ओके, वेरी नाइस।
2: ये सॉन्ग सुनाना बाजी, पाकिस्तानी इतनी नगमा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज सुना था इसके बारे में, बहुत अच्छा लगेगा।
0: अच्छा, पुराना वाला सुनाए कि नया वाला सुनाए?
2: पुराना वाला सुनाए।
0: चलो पुराना पुराना वाला चला दिया जी, थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे?
2: जो सारे सिंध में सुनते हैं, डेडिकेट कर रहा हूँ मैं।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा ख्याल रखें अपना। ये रहा गाना।

0: ताजा रंग रौनकू ऐं सरखेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक बान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहियूं सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
1: परेशान आयो, पेश आहे आर्श क्रीम हेयर कलर। पास मुख तैयारी, हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज़ ज़ाहिर करियो। आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओं रंग, नओं अंदाज़ ऐं नई ताज़गी। अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओं रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज़ में एतमाद।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम।

0: ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
1: ਹਾਂ,
0: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ?
1: ਹਾਂ,
0: ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ,
1: ਚੁੱਪ,
0: ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਵੱਜਣਾ।
1: ਹਾਂਜੀ,
2: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: एंड कॉल्स लेने जा रही हैं आप लोगों की बहुत सारी। हमारा सेगमेंट है सुर लगाओ गाना सुनाओ, तो उसमें एक और नेक्स्ट कॉलर। हेलो,
5: सलाम अलैकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
5: मोहम्मद
4: मोहम्मद ताहिर भाई, गाना सुना दें अच्छा सा।
5: अच्छा सा?
4: यस।
5: तेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान।
4: ओके जी, और कुछ कहना चाहेंगे?
5: जी दोस्तों, और
4: ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।

0: ट्रिपल 0113488 नेक्स्ट कॉलर लेंगे और चेक करेंगे जी कौन और कहां से. साथ साथ आप लोग मुझे मैसेजेस भी सेंड कर रहे हैं, सो मैसेजेस और कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स. तो हमें फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया है जी हमारी पोस्ट के ऊपर. मोहम्मद अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, कहते हैं सॉन्ग सुनाइएगा तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है. अरे वाह, इत्तेफाक से यही वाला चल रहा है अभी. आओगे जी नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो हेलो. ओके जी, रेडियो बंद करना भूल गए भाई और रेडियो पे सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, उनकी कॉल लग गई, उनको पता भी नहीं चला. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? मोरो से. कौन? ओके, प्रोग्राम सुन रहे
1: हैं? प्रोग्राम
0: कौन सा प्रोग्राम है? गाना सुनाएंगे?
1: नहीं, गाना
0: गाना नहीं सुनाएंगे. फिर क्या सुनाएंगे?
1: बस आप.
0: बस मैं सुना दूं? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. और टाइम भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सो हम अच्छा सा गाना भी प्ले करेंगे और न्यूज़ ब्रेक की तरफ भी जाएंगे. मेरे ख्याल से हम इसी के साथ ही न्यूज़ ब्रेक पे चले जाते हैं. न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों के बाद वापस आएंगे. वापस आने के बाद हमारा सेगमेंट होगा जी हरा भरा पाकिस्तान, तो उसको सुनना मत भूलिएगा. और उस सेगमेंट में मिलते हैं, जाते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर।
3: वित्तीय जोखिम
4: अदालतन का एंटी करप्शन कोर्ट्स मुतलिक थियल केसिस ते बीहर एहतसाब अदालतन में कार्रवाई शुरू। ने प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त एहतसाब अदालत 15 रेफरेंसेस ते कार्रवाई शुरू करे छी। जमीन के गैर कानूनी अलाटमेंट ए करप्शन केस में बलूचिस्तान के अगोणे वजीर अली हसन बिरोही अगोणे चीफ सेक्रेटरी सदीक मोहम्मद के नोटिस जारी कर छा। मलीर जो अगोणो डीसी काजी जान मोहम्मद एजाज हुसैन अब्दुल कादिर मेमण गुलाम मुस्तफ़ा मोहम्मद मूसा काजमी अब्दुल लतीफ़ कोसो के बे पेश थियण जो हुकुम। तपेदार निसार वगुण अली असगर महेंद्रो के भी नोटिस जारी किया वो। अगोणे मुख्तियारकार इकबाल अहमान मोहम्मद हनीफ एंड बेन के नोटिस जारी। मुल्क में बिजली के वापेदारन लाए बिजली लगातार 3 महीनों तई महंगी थियण जो इम्कान। 3 माही एडजस्टमेंट के मद में बिजली फी यूनिट 1.34 रुपये महंगे थियण जो इम्कान। नेपरा बिजली विरहाइंदड़ कंपनीज की दरख्वास्त फैसलो महफूज कर वरतो। वापेदारन 24 अरब रुपये जो वादू पार पवंदो।

0: केटी न्यूज जे शहीद साफी जान मोहम्मद मरजी अज टी वर्सी चक में शहीद जान मोहम्मद जी मजार ते माइटन ए कलम धड़न की हाजिरी 3 साल गुजरण बावजूद कतल केस का मुख्य जवाबदार कानून की पकड़ का आजा सिंध हुकूमत के वायदन बावजूद शहीद के खून से इंसाफ न थी सको 6 जवाबदार बख्शल महर बाबर बशीर मुनवर महर रमजान शेख ए बया जमानत से आजाद थियल मुख्य जवाबदार जुम्मन महर गुलजार नसीर रोशन मोहसिन महर
1: मैंने ओपन किया अपना मशरिक नियो इस्लामिक सेविंग्स बैंक अकाउंट और अपने फंड्स को किया ग्रो एट द हाईएस्ट इस्लामिक प्रॉफिट रेट
2: डाउनलोड मशरिक पाकिस्तान ऐप एंड ओपन योर बैंक अकाउंट इन 5 मिनट्स

0: असां 14 अगस्त जी पंहिंजे ॿारनि सां गॾु ऐं पंहिंजे सिंध वासियुनि सां गॾु पूरे पाकिस्तान में जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाए रहिया आहियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जो
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी FM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: It's 12:15 PM.
4: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
5: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला बयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दानो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
0: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फेस करती हूँ।
1: ओके जी, आप हमें बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग या मौसमियाती तब्दीली से हम आहंग ज़राअत से क्या मुराद है और पाकिस्तान के लिए ये क्यों अहम है?
0: जी, जैसे सब जानते हैं कि जनाब पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारे मुल्क में मैदानी इलाके भी हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं, समंदर भी है और उसके साथ साथ सहरा भी। तो ज़रई मुल्क होने के नाते जो है वो हम भी मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हुए हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ साथ। तो हम अपने किसानों को इस टेक्निक के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़रई पैदावार को वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़राअत है वो एक खुले आसमान के नीचे तिजारत है। खुले आसमान के नीचे तिजारत, तो उसमें जाहिर है कि मौसमियाती तब्दीली का भी असर होता है। दो बड़े जमीन और पानी, ये ऐसे ज़राए हैं कि जिनका हमें मौसर इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि माहौल पर भी इनके मनफी असरात हों। और पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है कि हमारी ज़राअत को पानी की कमी है, गैर मुतवक्क बारिशें हैं, सैलाब है और इसके साथ साथ खुश्कसाली और ज़मीन की जो सेम या थोर जैसे मसाइल हैं वो भी इसी के साथ जो है वो हम आंग रहते हैं।
1: अच्छा, आप हमें ये बताइए कि मौसमियाती तब्दीली जो है इस वक्त पाकिस्तान की ज़राअत और हमारे किसानों को किस तरीके से मुतासर कर रही है?
0: देखिए, जहाँ फसलें होती हैं तो वहाँ जो है वो पानी का इस्तेमाल है, जहाँ फसलें अच्छी तरीके से हो रही हैं लेकिन पानी की दस्तयाबी कम है तो खुशहाली जैसे मसले हैं और उसके साथ साथ सैलाब का खतरा है। तो मौसमियाती तब्दीली हमारी ज़राअत को कई तरीकों से मुतासर कर रही है। दर्जा हरारत में इजाफा है, वो फसलों की नशोनुमा को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट और उसके बाद पैदावार को मुतासर हो रहा है। ज्यादा बारिशें सैलाब का बायस बनती हैं और बारिशें अगर कम हो तो फिर खुशहाली है। इसके साथ साथ फसलों पर कीड़े मकोड़ों और फसलों की बीमारियां जो हैं इनमें भी शिद्दत जो है वो उसकी तब्दीली देखी जाती है कि मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ इन दोनों चीज़ों का पैटर्न, कीड़ों मकोड़ों का हमला और फसलों में बीमारी का मौजूदगी। तो इस सूरत हाल में हमें ऐसी ज़राअत की ज़रूरत है जो इस मौसमियाती दबाव को बर्दाश्त कर सके।
1: अच्छा, अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो आप हमें ये बताइए कि इन मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़रई तहकीक क्या किरदार अदा कर रही है?
0: जी बिल्कुल, बहुत अहम है ये सवाल, बहुत अहम है कि ज़रई तहकीक का जो है वो क्या किरदार है, बुनियादी किरदार है। ज़रई तहकीक से मौसमियाती तब्दीली से जो पैदा होने वाले मसाइल हैं उनका साइंसी और अमली हल तलाश करना होता है। तहकीक के जरिए ज्यादा दर्जे हरारत, खुशहाली और जो मैंने पहले आपको बयान किया कि सेम और थोर, इनको बर्दाश्त करने वाली फसलों की अकसाम जो है वो तैयार की जा सकती है। इसके साथ साथ जो पानी के जो मौसर इस्तेमाल है और स्पेशली जो जमीन जिस मट्टी पर होती है उसकी सेहत भी बहुत अहम है। पानी के इस्तेमाल में जदीद आपाशी के निजाम को जो है वो अपनाना चाहिए और जो कीड़े मकोड़े फसलों पे हमला करते हैं उनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी जिसमें जो है वो केमिकल और नॉन केमिकल दोनों तरीके कार हों, उनको इस्तेमाल करके जो है वो फार्म किसानों को वो फसलें वो तरीके कार बताए जा सकते हैं ताकि उनके लिए वो काबिल अमल, मौसर और माशी तौर पर जो है वो फायदेमंद हो।
1: अच्छा जी, अगर बात की जाए पाकिस्तान में इस वक्त पानी की कमी एक बहुत बड़ा मसला जो है बनता जा रहा है, आप हमें बताइए कि तहकीक किसानों को कम पानी में ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह मदद दे सकती है?
0: ये है कि इसमें जीनियाती लेवल पर जो है वो तहकीक होती है, यानी ऐसा जीनियाती मवाद के जो मुख्तलिफ मौसमी और माहौलियाती हालात में बर्दाश्त जो है वो की उसमें जो है वो अहलियत हो उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो अकसाम के जिनमें गर्मी है, खुशहाली है या नमकियात बर्दाश्त करने की बेहतर सलाहियत होती है उसकी मजीद अफजाइश की जाती है। और इस तरह से ऐसी अकसाम जिन्हें टेक्निकल वे में क्लाइमेट रेजिलियंट अकसाम कहा जाता है, यानी जो मुश्किल मौसमी हालात में भी बेहतर पैदावार दे सके। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़रई इलाके हैं, उनकी मुकामी हालात के मुताबिक ऐसी मौजू अकसाम का इंतखाब जो है वो अहम है, और ये ज़रई तहकीक का मेन जो है वो मैंडेट है।
1: ओके, ज़रई तहकीक के बारे में अगर हम मज़ीद बात करें तो ज़रई तहकीक किस तरह ऐसी फसलों की इकसाम तैयार करने में मदद दे सकती है जो ज़्यादा दर्जा हरारत या फिर खुश्क साली, पानी की कमी या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें जो बर्दाश्त कर सकें।
0: बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये जो ज़रई तहकीक है इसका बहुत अहम किरदार है। जो मौसमियाती तब्दीली है उसमें ज़रई साइंसदान उसको हमेशा पेशे नज़र रखते हैं, और उसमें पानी का इस्तेमाल, ज़मीन की सेहत, कीड़े मकोड़े और उसके साथ साथ ऐसी ज़रई अकसाम के जो किसान को फ़ायदा दे सकें वो तैयार भी हो रही हैं, और आइंदा भी लाए अमल है कि उसके मुताबिक जो है वो काम किया जाए।
1: अच्छा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से कीड़े मकोड़ों का जो है फसलों में आ जाना और बीमारियों का आ जाना, तो इसकी वजह से फसलों में तब्दीलियां आ रही हैं। आप हमें ये बताइए कि तहकीक इन मसाइल के हल में क्या किरदार अदा कर सकती है।
0: जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, कैटेगरीज होते हैं। एक जो है वो मेजर पेस्ट होते हैं और एक माइनर पेस्ट होते हैं। इन मौसमियाती तब्दीली की वजह से अगर हालात उन कीड़े मकोड़ों के लिए मखसूस फसल, वो चाहे कपास है, गंदुम है या गन्ने की शुगर केन की फसल है, उनमें मौसमी हालात अगर साजगार हो जाते हैं तो वो माइनर यानी नीचे दर्जे के जो पेस्ट हैं उनकी अफजाइश नस्ल ज्यादा होती है और वो मेजर पेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। यही चीज आजकल हमारे मुल्क के किसान भी नोट कर रहे हैं कि जनाब कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो बिल्कुल न नजर आने वाले कीड़े हैं उनकी तादाद भी जो है वो ज्यादा होती है और वो नुकसान होता है। तो तहकीक जो है वो उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम है, रेसिस्टेंट वेराइटीज हैं, और दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, यानी ऐसे किसान दोस्त कीड़ों की अफजाइश के जो उन नुकसानदेह कीड़ों के को इस्तेमाल कर सकें, उनको खा लेते हैं, वो उनकी खुराक होते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो हम जहर इस्तेमाल करते हैं उन जहरों से हम अपनी फसलों को तहफ़ुज़ फराहम कर सकते हैं।
1: ओके जी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है ज़रई शुबे से रिलेटेड, तो आप हमें बताइए कि टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जदीद टेक्नोलॉजी मसलन रिमोट सेंसिंग, GIS, मौसम की पेशगोई और मसनूई जहानत क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग में किस तरह मददगार साबित हो सकती है।
0: ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। जिंदगी के दूसरे शोबों में जिस तरह से जो है वो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ज़राअत का शोबा भी जो है वो जो जदीद तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, रेडियो या टेलीविजन पर भी जो है वो मौसमी हालात की आगाही दी जाती है। शहरी इलाकों के साथ साथ गाँव के देहात लोग, हमारे किसान भाई, उनसे भी मुस्तफीद होते हैं। तो रिमोट सेंसिंग और ये सैटेलाइट इमेजरी ये ऐसी टेक्निक हैं कि जिनके जरिए फसलों की सेहत, उनकी खुशहाली, और बाद औकात ऐसा भी होता है कि पानी को भी जो है वो मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की पेशगोई, इससे किसान जो है वो बेहतर तौर पर अपनी बुआई, कल्टीवेशन, आबपाशी और फसलों के तहफ़ुज़ के फैसले कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जो है वो ये मुस्तकबिल में भी इन मालूमात को किसान इस्तेमाल करने के बाद अपने दुरुस्त और बरवक्त जो है वो ज़रई मशवरे जो है वो उनको हासिल हो सकते हैं, जिससे उनकी मदद हो सकती है।
1: अच्छा, बहुत सारे किसान बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नहीं जानते मोस्टली, तो आप हमें ये बताइए कि जो आने वाली नई टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो इस वक्त मौजूद हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ को लेबॉरेटरी और तहकीकी इदारों से किसानों के खेत तक मौसर अंदाज में कैसे पहुँचाया जा सकता है।
0: जी, इसके लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हमारे यहाँ मुल्क में ज़राअत का जो अपना तरीक़ेकार है उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी जो ज़रई ग्रेजुएट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज पैदा करती हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, उसके बाद तहकीकी इदारे हैं जो R&D रिसर्च करते हैं, और हुकूमत का एक और इदारा है जैसे ज़रई तोसी इदारा कहा जाता है, वो ब्रिज होता है इन तहकीकाती इदारों और किसानों के दरमियान। यानी तहकीकाती इदारों में जो तहकीक होती है उसको मनवान जो उनके रिजल्ट है वो किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये तहकीकाती इदारे, ज़रई तोसी महकमे और इसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी जामियात, एक और स्टेक होल्डर का मैं इजाफा करना चाहूंगा, वो है प्राइवेट सेक्टर, निजी शोभा। तो ये सब मिलकर किसान की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो इनके होना जरूरी है ताकि इनके जो नतायज हैं वो उनके मुआशी फवायद को जो है वो बेहतर कर सके।
1: अच्छा, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, तो आप हमें ये बताइएगा कि लास्ट में आपसे क्वेश्चन है मेरा कि आप पाकिस्तान के किसानों को क्लाइमेट चेंज या जो मौजूदा चैलेंजेस हैं और क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग है, इसके हवाले से क्या अहम पैगाम देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो इसको समझ लेना चाहिए कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो एक हकीकत है, और हमें अपनी ज़रई पैदावार को उसके मुताबिक ढालना होगा। किसान बेहतर और मौसमी हालात के मुताबिक अकसाम का इंतखाब करें, पानी का मौसर इस्तेमाल करें, अपने खेत की मिट्टी जो है वो उसकी सेहत बरकरार रखें, और जो जदीद ज़रई मशवरे हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। दूसरी तरफ जो है वो तहकीकाती इदारे, हुकूमत और जो निजी शोबा है उनको ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम करनी चाहिए जो किसानों के लिए जो है आसान, सस्ती और अमली हो। तो फाइनली ये कहा जाए कि हमें ऐसी ज़राअत की तरफ बढ़ना है जो ज़्यादा पैदावार दे, कम इस्तेमाल करे और किसान के लिए मुनाफा बख्श हो। यही पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती और ज़रई मुस्तक़बिल की बुनियाद है।
1: Thank you so much, Mr. Parviz Ahmed Baloch, for being with us on the show. Thank you so much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच जी। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। और आज का सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है, तो इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए. एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.

0: पॉडकास्ट ऐं 25 अगस्त 2026 अङारे जे ॾींहुं सुबुह जो 10 वॻे खां मंझंदि 3 वॻे ताईं लॻी रही आहे, जंहिंमें डॉक्टर असद अज़ीज, MBBS MS आर्थो, आर्थोपेडिक सर्जन, हॾी ऐं जोड़, गोॾनि जो सूर, चेल जो सूर, कंध जो सूर, अर्कुनि निसा जो सूर, पैदाइशी पेरनि जो टेडो हुजण, टुटल बांह ऐं टंग ऐं हॾियुनि जी कमज़ोरी वारे मरीज़नि जी मुफ़्त चकास कंदो। हंध ज़ैनब मेडिकल सेंटर, डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल, वेझो सोढा फ्लोर मिल, 7G रोड, खिपरो। नोट, डॉक्टर साहब हर अंगारे ते OPD कंदा। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0305-327-6608 ऐं 0344-349-8896।
1: खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी स्किन खे बणाए रेडिएंट स्पार्कलिंग ऐं ॾिए शानदार मिरेकल ग्लो, कुदरती चमक ऐं निखार जो बहितरीन इंतखाब। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय आगाज़ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।

0: रुकिए, अगर आपने अब तक सेज एंड टेक्नोलॉजी आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरों से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में BS कंप्यूटर साइंस, BS इंग्लिश और BS पब्लिक हेल्थ के एडमिशन जारी हैं। मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, इंडोर गेमिंग्स, कैफेट एरिया और बेहतरीन कैंपस फैसिलिटीज के साथ मयारी तालीम आपके अपने शहर में। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एडमिशन फेवर पर 50% ऑफ और सेमेस्टर फेवर पर 10% का खास ऑफ भी दस्तयाब है। अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं, आज ही भिटाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। लिमिटेड सीट्स, अप्लाई नाउ। मजीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 03222841047।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। सिंधड़ी आमो की सरजमीन
2: सिंध का
3: प्रोडक्ट जी मशहूरी थी तपोए अवां वट आहे मौजूद जीए मीरपुर खास FM 88 जो आवाज जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंद जीए मीरपुर खास FM 88 केतरन ही नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास FM 88 वधी कर आपते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर 03322724301 आई 03332-07-1।
1: मीरपुर खास की आवाज हर दिन GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आशी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू अब, और साथ साथ कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ मूव करेंगे. जिन लोगों ने हमें बहुत सारी कमेंट्स कर दिए हैं और बहुत सारे मैसेजेस कर दिए हैं, उन लोगों के कमेंट्स, उन लोगों के मैसेजेस

0: ओके जी, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के, और गाना चेंज कर दिया है मैं.
1: याद तेरी सीने
0: ओके हमें मैसेज किया है जी, अस्सलाम वालेकुम. सिंध की आवाज आरजे रुखसार, नाइस शो है, नाइस शो होता है. दो बार कॉल पिक किया आपने, मेरी आवाज आपको नहीं आई, मेरी आप मेरी आपको आ रही थी, नहीं आ रही थी, आपको मेरी आ रही होगी. आप ऐसा किया करें कि जब आप कॉल किया करें ना, तो हेडफोन्स वगैरह निकाल दिया करें, ठीक है, से आपकी आवाज साफ आएगी और आएगी. आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी आवाज आ रही है लेकिन नहीं आती, तो मेक श्योर जब भी आप कॉल करें किसी ऐसी जगह पे जाके कॉल करें जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल्स आ रहे हो, जहाँ पे आप इजीली कंफर्टेबल होके बात कर सकते हो, ठीक है. तीसरी बात ये कि हेडफोन्स वगैरह जो लगाए होते हैं आपने, वो निकाल दिया करें कॉल करने के टाइम पे, ठीक है.

0: Okay, caller line pe hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum assalam. Kaun kahan se?
1: Aap se main baat kar raha hoon sir.
0: Pehli dafa call kar rahe
1: hain? Nahi nahi, kaafi dafa ki hai lekin aap bhool jate ho.
0: मैं भूल जाती हूँ, बस क्या करूँ, ये भूलने की बीमारी लग गई है और बस उम्र का तकाजा है जबकि इतनी है भी नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हाँ, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी।
0: तो कैसा लगता है प्रोग्राम? कॉल ही काट दी।

0: GA Soccer FM 88.
1: Sona Yuva Grenada, jadid. टेक्नोलॉजी साथ तैयार कर आला मायार जो सोना यूरिया
2: क्रीम हेयर कलर पहेंजे पसंदीदा रंग सा पहेंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश आई वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पहेंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सा पहेंजी शख्सियत में आयो नओ रंग नओ अंदाज आई नई ताजगी अडी पहेंजे वेजे स्टोर ता आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो आई पहेंजी खूबसूरती के दियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूब सूरती हर अंदाज में एतमाद
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती

0: मोरो, नौशेरो,
1: मीरपुर खास,
0: लाड़काना,
1: सक्कर,
0: गूंज रही है हर जगह पर
1: सिंध की आवाज
0: जीए FM 88 नेटवर्क।

मिठू जी वेलकम बैक एंड आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हमें मैसेज किया है मिठू जी रुखसार अस्सलाम वालेकुम सफर के रास्तों पर हम सफर नहीं कोई तन्हा है जिंदगी जिया नहीं कोई दो पल की है ये जिंदगी और आगे दो पल के बाद ये मैसेज मिसिंग पार्ट है. अच्छा इसके अलावा आपके जितने भी मैसेजेस आए हैं ना शेर वाले या आते हैं वो सारे मिसिंग पार्ट क्यों आते हैं ये मुझे आप जरूर बताएं. मतलब चार पांच मैसेजेस आपके रोज के आते हैं लेकिन आपकी जो शेर है ना वो मिसिंग पार्ट आता है. पूरा लिखा करें ना, या तो आप पूरा लिखते नहीं है या पूरा आता नहीं है. लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हर बार पूरा ना आए, है ना. तो पूरा लिखा करें.

0: ओके कॉलर लाइन पे मौजूद है. हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: सफदर बलोच.
0: सफदर बलोच, आपके मैसेज क्यों मिसिंग पार्ट आते हैं?
1: नहीं आते, पता नहीं आपकी तरफ.
0: नहीं, आपका आधा शेर आता है तो शेर पूरा लिख के भेजा करें. आपके शेर बड़े कमाल के होते हैं. चले पूरा लिखिएगा. अच्छा मुझे बताएं, आज की अच्छी बात क्या है?
1: अच्छी बात ये है कि कोई किसी के साथ हद से न करे.
0: हाँ,
1: अल्लाह हर किसी को रखे और
0: आप. ओके जी, थैंक यू सो मच. बहुत सारा आप भी अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.

स्टाइल चेंज करेंगे एंड लास्ट में हम प्ले करेंगे हारून की आवाज को और इसी के साथ हम लेंगे फाइनली आपसे इजाजत और इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी नेक्स्ट वीक. मैं कहने वाली थी कल. अच्छा हाँ कल भी तो होने वाली है लेकिन मैं भूल गई. अच्छा कल हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है Signs out. Take care. Goodbye. Amane khuda. Allah hafiz.

मुल्क में बिजली के वापदारन लाइ बिजली लगातार टिन महीननि ताईं महांगी थियण जो इम्कान। टे माही एडजस्टमेंट जे मद में बिजली फी यूनिट 1.34 रुपया महांगी थियण जो इम्कान। नेपरा बिजली हलाईंदड़ कंपनीज़ जी दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। वापदारनि ते 24 अरब रुपियनि जो वाधू बिल।

सिंध हाई कोर्ट सीसी जे मातहत वलीका अस्पताल मां छावी पकड़जण वारे केस में जांच करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। चीफ सेक्रेटरी जी सरबराही में जांच कमेटी जोड़ण जो हुकुम। अदालत चयो त जांच कमेटी में वीह ग्रेड जे अहिड़नि अमलदारनि खे शामिल कयो वञे जंहिंजो अस्पताल जा जांच सां तालुक न हुजे। जस्टिस अदनान अलकरीम मेमण चयो त हीउ मामिलो इंतिज़ामी नोयत जो न आहे, हीउ मामिलो ज़िंदगी ऐं अवामी सिहत बाबति ज़िमेवारनि जो आहे। फादरपुर वेझो कारे मामले जो जरगो 15 वरनि जो नींगर कारो करार। 16 लख रुपया ॾंड मुक़ररु। वॾाणी जे बासर वॾेरे रईस सताउला भुटो जी सरपंची हेठि कारे इल्ज़ाम जो जरगो थियो। 15 वरनि जे स्कूली शागिर्द शहबाज़ भुटो मथां कारे जो इल्ज़ाम हणी 16 लख ॾंड विधो वियो। नींगर जे वालिद यासिन भुटो जो चवणु आहे त पुट ते कारे जो इल्ज़ाम हणी 16 लख ॾंड विधो वियो आहे। ज़मीन ऐं घर ते कब्ज़ो कयो वियो आहे। जरगे जो नोटिस वठी घर ऐं ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ कारवाई कनि। दोदापुर वेझो टिन शाखनि खे गारा। केतिरा ई फसल पाणी हेठि। बेगारी केनाल खे ॻोठ पीर बख़्श बुलेदी ऐं मौला बख़्श माली वटां ॿ गारा लॻा। कोटली शाह खे 15 फुट ऐं ताज़ा शाह खे 30 फुटनि जो गारो पइजी वियो। शाखनि खे गारा पवण करे पाणी फसल खे ॻोड़ींदो ॻोठनि ॾांहुं वधणु लॻो। सुबुह सेठ खां लॻो दौरे शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। आबादगारनि ऐं शहरियुनि गवादर मोटरवे खे ट्रैक्टर ट्रालियुनि सां बंदि कयो। सदन चवण आहे त सिंधु दरिया में बोड वारी सूरत हाल मौजूदु आहे, पर शाख में पाणी न आहे। पाणीअ जी खोट सबबि फसलनि ऐं आबादगारनि जी मुआशी सूरत हाल ते सख़्तु असरु पइजी रहियो आहे।

KTN News जे शहीद साफी जान मोहम्मद मर जी अजली वर्सी चक में शहीद जान मोहम्मद मर जी मजार ते माइटन ऐं कलम धड़ियुनि जी हाज़िरी जे साल गुज़रण बावजूद क़त्ल केस जा मुख्य जवाबदार कानून जी पकड़ खां आजाद सिंध हुकूमत जे वाइदनि बावजूद शहीद जे खून सां इंसाफ़ न थी सघियो। छह जवाबदार बख्शल महर, बाबर बशीर, मुनवर महर, रमज़ान शेख ऐं ॿिया ज़मानत ते आज़ादु थियल मुख्य जवाबदार जुमन महर, गुलज़ार नसीर, रोशन मोहसिन महर ऐं ॿिया गिरफ़्तार ई न थिया। शहीद जान मोहम्मद जा वारिस ऐं कलम धड़ियुनि खे इंसाफ़ जो इंतज़ारु।

0: 14 अगस्त धाम धूम सां मल्हाईंदा आहियूं, मल्हाईंदा रहंदासीं। पंहिंजे क़ौम सां, मोहबे वतन आहियूं।
1: असां 14 अगस्त पंहिंजे ॿारनि सां गॾु ऐं पंहिंजे सिंध वासियुनि सां गॾु पूरे पाकिस्तान

0: सिंध समेत समूरे मुल्क में।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंधड़ी आमों की एक नई पहचान।

0: साजो सूर पैदाइशी पेरन जो टेडो हुजण टुटल बाह ऐं टंग ऐं हॾियुनि जी कमज़ोरी वारे मरीज़नि जी मुफ़्त चकास कंदो हंध ज़ैनब मेडिकल सेंटर डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल वेझो सोढा फ्लोर मिल 7G रोड खिपरो नोट डॉक्टर साहब हर अंगारे ते ओपीडी कंदा वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0305-327-6608 ऐं 0344-349-889-6
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के

0: आपके शहर मीरपुर खास में भिटाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरों से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंग्लिश और बीएस पब्लिक हेल्थ के एडमिशन्स जारी हैं। मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, इंडोर गेमिंग, कैफेट एरिया और बेहतरीन कैंपस फैसिलिटीज के साथ मयारी तालीम आपके अपने शहर में। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एडमिशन फेवर पर 50% ऑफ और सेमेस्टर फेवर पर 10% का खास ऑफ भी दस्तयाब है। अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं, आज ही भिटाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। लिमिटेड सीट्स, अप्लाई नाउ। मजीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 03222841047। अखियन के सब का वे इदारे जा मशहूर ए तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी सर्जन डॉक्टर इसरार मोहम्मद हयात खान इलाज कंदा आहिन। टाइम रोजाना सुबह 10 वगे का 1 वगे ताई, शाम 6 वगे का रात 8 वगे ताई। आचर मोकल है जुमे जे दिन ऑपरेशन कया वींदा। एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर अखिन जी अस्पताल, सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास। मोबाइल नंबर 03032617077।
1: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी, आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जे मीरपुर ऐलान। शादी ब्याह की मुबारकबाद, मिलाद, जलसा, स्कूल कॉलेजेस, ब्यूटी पार्लर्स, कॉस्मेटिक्स शॉप्स, जनरल और मेडिकल स्टोर्स, बुटीक, गारमेंट शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, ज्वेलर शॉप्स, अस्पताल, फ्री मेडिकल कैंप्स, एनजीओस, फूड पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स, शोरूम, ऑटो शॉप्स, हाउसिंग स्कीम्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, सकाफती मेला, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, शादी हॉल, मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शॉप्स, सीड कारपोरेशन, सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को 4 चांद, वो भी आपकी तवक्कोआत से कम रेट्स में। तो अभी राब्ता करें मार्केटिंग मैनेजर, मोबाइल नंबर 03322724301 और 03337220071।
2: अजवरी कैले कयासी।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream. Glowing Skin Jo Raaz. A product by... बायोकॉन
2: टेक्नोलॉजी सा तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करने में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाब करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: हर दिन जीएफएम हर दिन हर पहर
4: माहिर सर्जन टाइम आचर का जुम्मो रोजानो सुबह जो 11 बजे का रात जो 8 बजे ताई एड्रेस बैतुल शिफा बोन ट्रामा क्लिनिक लखनऊ देरो चौक लाड़काणो याद रखा डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीज जो मुआइनो कंदा आहिन एड्रेस सखर टाउनशिप आरएफ बिल्डर्स बंगलो नंबर 20 सेक्टर नंबर 3 घोड़ा गेट सखर टाइम मंझन जो 2 बजे का शाम जो 6 बजे ताई वधिक राबते जे लाए मोबाइल नंबर 0336864025 आई फोन नंबर 0744057199
5: खुशखबरी लम्स हॉस्पिटल जामशोरो मलेशिया ए चाइना मा तालीम याफ्ता नंदन ए वात जे बीमारन जो माहिर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद यूसुफ अली शाह
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
0: पहचो शहर पहचो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोतिया जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

वफ़ाकी वज़ीर ऐं सिंध हुकूमत जे नुमाइंदनि सां ॻाल्हियूं नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद जे 6 ॾींहनि ते मुल्कगीर हड़ताल जारी। गुड्स मलिक शहज़ाद अहवान चयो आहे त वफ़ाकी हुकूमत सिंध हुकूमत असांजा मसला हल करण में संजीदा न आहिनि। मुतालबनि जी मंज़ूरीअ ताईं हड़ताल जारी रहंदी। कराची जे नौजवान मीर रज़ा केस जी जांच लाइ जांच जी टीम जारी। डी आई जी आमिर फारूकी, एस एस पी अली रज़ा, एस पी केस खान ऐं डी एस पी सिराज लाशारी फिरोजाबाद थाणे ते पहुता। जांच टीम अॻूणे डी एस पी शाहरा फैसल अरशद आफरीदी ऐं अॻूणे एस एच ओ गुलिस्तान जौहर कामरान कुरेशी खे तलब करे वरितो। फैज़गंज जी अदालत में कोट लालू भरसा मुबैना पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियल टिन नौजवाननि वारे केस जी ॿुधणी। अदालत ॿिनि केस जी जांच एफ आई ए ॾांहुं मुंतकिल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत जा दलील ॿुधण बाद पुलिस मुक़ाबले ऐं वारसनि पारां पुलिस ख़िलाफ़ दाख़िल करायल केस जी एफ आई ए हवाले करण जो हुकुम ॾिनो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणी जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। मीरपुर भटोरो तालुके में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि ऐं शहरनि जो एहतजाज। सजावल रोड ते धरणो। शाखनि ऐं वाहन में पाणी छोड़ करण जो मुतालबो। कुबो सैद खान लॻ ढोरे शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। आबादगारनि ऐं शहरनि गवादर मोटरवे खे ट्रैक्टर ट्रालियुनि सां बंदि कयो। ढोरे शाख जे पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। रोड़ी में काज़ी वाह जे पुछड़ी में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। पाणी ॾेई फसल बचाइण जो मुतालबो। सिंधड़ी वेझो कैनाल में ॿुॾी वियल नींगरी आमणा शहर जो लाश 3 ॾींहं गुज़रण बावजूदु हथ न आयो। वारसनि जो इंतिज़ामिया जी बेहसी ख़िलाफ़ एहतजाज। नींगरीअ जे लाश जी ॻोल्हा में मदद करण जो मुतालबो। मुज़ाहिरीन चयो त नींगरी जो लाश ॻोल्हण में इंतिज़ामिया मदद न करे रही आहे। नोटिस वरितो वञे।

केटीएन न्यूज के शहीद साफी जान मोहम्मद मर के टवी वर्सी चक में शहीद जान मोहम्मद की मजार से माइटन कलंदड़ की हाजिरी के साल गुजरण बावजूद कत्ल केस का मुख्य जवाबदार कानून की पकड़ का आजाद सिंध हुकूमत के वायदन बावजूद शहीद के खून से इंसाफ न थी सको। छह जवाबदार बख्शल मर बाबर बशीर मुनवर मर रमजान शेख ए बया जमानत आजाद थे मुख्य जवाबदार जुम्मन महर गुलजार नसीर रोशन मोहसन महर ए बया गिरफ्तारी न थे। शहीद जान मोहम्मद जा वारिस कलमदड़न के इंसाफ जो इंतजार।

सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, रैलियुनि ऐं तक़रीबनि जो सिलसिलो जारी। नवाबशाह, कंकोट, खैरपुर, खैबर, अठहठ, मोरी, मेहड़, मुबारकपुर ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं। मीरपुर, भटोरो, मदेजी, मनोड़ो, चक

0: नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोतिए जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
2: सुबह की चाय

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।